0: वो जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो हिजब तहरीर को बैन करना चाहती है, और ये कोशिश बहुत हुई है पहले भी, लेकिन उसका कोई लीगल जवाज़ नहीं मिलता हुकूमत को। लेकिन बार बार जब एक ऐसी तहरीक, आप उससे जो है अग्री करें या ना करें, या मैं उसको बुरा समझूँ ना समझूँ, लेकिन यह है कि एक लीगल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जब आप बैन करते हैं बहाने बना के, तो ये तो फिर बात गलत हुई।
1: ये बात न सिर्फ गलत है बल्कि ये वज़ीर आज़म का और इस तरह के बयान देने वाले वो लोग जो हिजब तहरीर को बैन करना चाहते हैं, पाबंदी चाहते हैं, उनकी अहमकाना सोच का नतीजा है।
0: जी बिल्कुल।
1: यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो है वो फैसला दे चुकी है कि ये तहरीक जो है यहाँ बिल्कुल दिल्ली तौर पर कानून की दायरे में रहते हुए काम करती है, और इसके हिसाब में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से इस पर पाबंदी लगाई जाए। ये बात अलग है कि यूरोप के दो तीन मुल्कों में इस पर पाबंदी है, जिनमें जर्मनी सबसे पहले। लेकिन लिखना ये है, अब आप सवाल की तरफ आते हैं कि जब वज़ीर आज़म खुद इस बात के लिए फर्क तोड़ती हैं, ऐलान करती हैं और फख्रिया तौर पर बताती हैं कि मसीही वैल्यूज किरदार का तहफ़ किया जाएगा और उन्हें फ़रोग दिया जाएगा, और इसके लिए वो तो इस बात पर फख्र करती हैं कि यूरोप के कई रहनुमा जो हैं उनके साथ वो तबादला ख्याल कर चुके हैं।
0: जी जी,
1: ये बड़ी अच्छी बात है आप चुनिए आप कीजिए। दूसरी तरफ जब हिजब तहरीर अपने नौजवानों को मतवज्जो करती है कि देखिए अब आप स्कूलों से उठकर कॉलेजों में जा रहे हैं, कॉलेजों से उठकर आप जूनियर यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, तो अपनी असल शनाख्त को मत भूलिए।
0: इसमें कोई बुरी बात है कि अगर वो अपनी शनाख्त की बात?
1: ये कोई मुतालबा नहीं है।
0: जी जी,
1: ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये एक तजवीज है, एक मशवरा है। आप इलम हासिल कीजिए, अपने ज़राए से फ़ायदा उठाइए, लेकिन अपनी असलियत जो है बासियत मुसलमान उसको मत भूलिए। अगर ये बात जो है वज़ीर आज़म को चुनती है तो फिर उनको ये भी एहसास रखना चाहिए कि जिस मसीहियत का वो तहफ़ करने के लिए उठ खड़ी हुई है उसने क्या क्या जुल्म किए हैं और क्या क्या जुल्म कर रही है।
0: और उसके अलावा नसर साहब, हर हर जी जी,
1: सिर्फ ये है कि वो नारा नहीं लगाते कि हम ईसाइयत के नाम पर हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वरना हर जंग शुरू करने मश्क वस्ता में हर जंगी कदम उठाने से पहले अमेरिका के लोग जो थे, अमेरिका के सरबराहान जो थे, वो पोप से मिलते थे
0: वो तारीख में। जी जी हाँ, अभी बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपने आर्टिकल में आपने बड़ी वजाहत की है हिजब तहरीर की, जो मुसलमान तलबा के नाम जो अपील है, मैंने उसको बड़े गौर से पढ़ा है। उसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ईसाइत बुरा मज़हब है या लोगों को ईसाइत के खिलाफ कोशिश
1: नहीं कहा।
0: उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि मुसलमान तलबा हैं, उनको चाहिए कि अपनी सकाफत को ना भूलें। तो ये तो वज़ीर आज़म भी वही बात करती हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में,
1: ये कहना कोई जुर्म नहीं है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: मैं इस मामले में हिजब तहरीर के बिल्कुल साथ हूँ कि उन्होंने हमारी नौजवान नस्ल को ये याद दिलाया है और इसका तहफ्फुज़ करने के लिए उन्हें मशवरा दिया है कि आप मत भूलिए कि आपकी असलियत क्या है।
0: जी जी जी जी,
1: और कौन सा मुसलमान घराना है जो अपने बच्चों को ये तरतीब ये तरगीब नहीं देगा कि अपने इस्लाम के दिन पर अपने इकदार पर कायम उदान रहें और इस मुआशरे में हिस्सा डालने के लिए हद तक मकदूर कोशिश करें।
0: जी जी जी, अच्छा आपने ये भी अपने मजमून में लिखा है कि ये तनाज़ा जो है ये इसलिए भी अहम है कि इसमें सिर्फ एक तंजीम और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफ नहीं बल्कि एक बुनियादी सवाल ज़ेर बहस है कि क्या किसी नौजवान को मजहबी तशख़्ख़ इसकी जमहूरी और तालीमी वाबस्तगी के साथ बयक वक्त मौजूद रह सकता है या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: बिल्कुल रह सकता है, और यही चीज़ है जिसे वज़ीर आज़म और उनके साथ दूसरे डंडोरते जो हैं सियासतदान
0: जी
1: वो अलग रखना चाहते हैं। यानी आप सिर्फ एक आपको जो पढ़ाया जाता है वही सोचिए, आप सवाल मत उठाइए, नंबर एक। दूसरा ये है कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं बहसीत मुसलमान अगर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल हूँ और मैं अपना इस्लामिक तशख्स जो है वो बरकरार रखते हुए अपनी क्लास में भी जाता हूँ, अपना होमवर्क भी करता हूँ, अपना सब कुछ करता हूँ, तो मुझे क्यों कहा जाए कि आप ये जो इस्लामी तर्ज अमल है और जो तरीका आप अपनाए हुए हैं इससे दस्तबरदार हो जाए? क्या मेरी पढ़ाई में कोई फर्क पड़ रहा है? क्या मेरे शब रोज जो है वो मेरे दूसरे हम क्लास डैनिश तालब इलम जो हैं उनकी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं? हरगिज नहीं।
0: अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होते हैं जो मैंने मेरे जो गेस्ट आए थे वो ह्यूमन राइट के बारे में हमने उससे बात की, उसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि हमने कभी भी किसी सियासी लीडर को, ख़ासतौर पे हमारे वज़ीर आज़म को, ये कहते नहीं सुना कि जो ज्यूइश लोग यहाँ पे रहते हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने मज़हब की बात ना क्या करें, या अपने मजहबी मामलात में जो है वो सियासत को ना लाएं, या उन्होंने कभी भी क्रिश्चियन चर्च के बारे में बात नहीं की? अभी मैंने अभी नया पासपोर्ट बनवाया, उसके सेकंड पेज के ऊपर हज़रत ईसा की बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई है। तो ये बातें जो अजीब सी लगती हैं कि जब आप एक ख़ास मज़हब को निशाना बनाती हैं तो आप दूसरे मज़हब के बारे में कभी आप नहीं बात करते।
1: तो आपने बिल्कुल
0: वजह
1: कहा, और शायद यही वजह है कि आज तक इस्लाम को बतौर दीन
0: जी
1: यहाँ तस्लीम नहीं किया गया सरकारी सतह पर।
0: एग्जैक्टली।
1: और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हिंदुस्तान का एक छोटा सा तबका है जो साईं बाबा कहलाता है।
0: जी जी जी हाँ हाँ हाँ हाँ।
1: डेनमार्क में और कुल तकरीबन 541 के करीब मेंबर हैं।
0: अच्छा।
1: जिनमें तो बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर जो है वो भी उसमें शामिल हैं।
0: अच्छा।
1: बड़ा अहम लोग जो है वो उसकी रुकनियत रखते हैं।
0: जी।
1: उसको दीनी बरादरी के तौर पर न सिर्फ तस्लीम किया गया है बल्कि कई मिलियन के करीब उसको माली आहनत भी दी जाती है, जो कि तमाम मजहबी अकलियतों का हक है। मुसलमानों के लिए ये सहूलत नहीं है।
0: जी बिल्कुल।
1: और बदकिस्मती ये है कि हमारी तंजीमें जो इस्लाम के नाम पर यहाँ पर कायम है और हमारे उलमा इकराम, तो जानता हूँ कि उनमें से बेशतर जो है वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं। मेरी खुद का तो साबित होती रही है मिनिस्ट्री ऑफ चर्च के साथ इसी जमाने में, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट रखे हैं कि इस्लाम को बतौर दीन यहाँ कबूल किया जाए।
0: एग्जैक्टली।
1: जबकि यूरोप के कई मुल्कों में इस्लाम को बतौर दीन जो है वो
0: कबूल किया, बिल्कुल,
1: लेकिन डेनमार्क वाले नहीं कर रहे। इससे आप इनकी उस बात का, उस वक्फ का खुद अंदाजा लगा लें जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं, यानी मुनाफ़त की हद है।
0: अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है पॉलिटिकल पार्टियों, अभी एक नई खबर आई है कि जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी जिसको ब्लू ब्लॉक कहते हैं, उसके कुछ पार्लियामेंट के मेंबर और पॉलिटिशियन जो हैं वो ऐसी फेसबुक ग्रुप्स के पे जाके कमेंट करते हैं जिसमें वो ग्रुप जो है उसमें साफ तौर पे ये दावत दी जाती है, ये कहा जाता है कि मुसलमानों को कत्ल कर दो। तो ये सियासतदानों तक ये बात जो है अब ये बात फैल गई है।
1: ये इंतहाई दुख की बात है, और ऐसी की कुछ साइट्स मैंने भी देखी हैं जिनमें इस बात पर उकसाया जाता है। सवाल ये पैदा होता है जब सियासतदान खुद ऐसी वेबसाइट पर जाकर खुद तबसरा करते हैं तो वहाँ कानून क्यों खामोश रहता है? जबकि यही बात अगर मुसलमान किसी वेबसाइट पर लिखते, यहाँ डेनमार्क में रहने वाला कोई नौजवान मुसलमान तो उसका पस मंजर हो, वो कोई ऐसी बात कर दे तो कानून खुद हरकत में आ जाता है। और ऐसे 3-4 मामला हुए हैं जिनमें नौजवानों को इस तरह के इंतहाई मुतशद्दिदाना बयान लिखने पर सजा भी दी गई है और तंबीह भी की गई है।
0: जी हाँ।
1: तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुआशरे को, और खुद सियासतदान जो इंसानियत की जीत तो गाते हैं लेकिन दूसरी तरफ वो डेनमार्क में रहने वाली एक अकलियती बरादरी को किस तरह निशाना बनाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: मैं यहाँ ये भी अर्ज करूँगा, हमारे कई नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में काफ़ी मुतहर्रिक हैं, खासतौर पर सोशल डेमोक्रेट पार्टी में और इसमें न्यू डेमोक्रेटिक में काफ़ी आए हैं
0: और रेडिकल वेंस्ट्रा में,
1: और रेडिकल वेंस्ट्रा में इन लोगों को चाहिए कि अपनी पार्टी के जो सरकर्दा लोग हैं उनसे इस मामले पर बात करें कि आप क्या कर रहे हैं और हमें दीवार के साथ लगाकर आप क्या चाहते हैं कि हम दीवार के साथ ही लगे रहें?
0: बिल्कुल। और ये जो अभी बात कर रहे हैं उसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो अब डेनिश हुकूमत, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये एक बिल पेश करना चाहती है पार्लियामेंट में जिसमें वो बिल कहते हैं कि टू प्रिवेंट रेडिकलाइजेशन, जो और वो रेडिकलाइजेशन जिस जो टेररिज्म की तरफ जो है नौजवान चले जाते हैं। तो अब ये अजीब सी बात है कि ये 9/11 के बाद भी बड़ी बातें शुरू हुई, आपको याद है रेडिकलाइजेशन की बात हुई, मुसलमानों की हमेशा जो उसके साथ जोड़ दिया गया है। तो अगर ये गवर्नमेंट ने अगर ये कानून जो है इसको इंट्रोड्यूस किया तो इसके नताज तो जो हैं ये तो इंसानी हकूक के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट ने इसके बारे में तनबीह भी दी है कि आप ऐसा नहीं करें क्योंकि ये जो है ये बात गलत है। आप किसी को जो है ये अगर एक शख्स ने कोई टेररिज्म नहीं किया तो उसको उस या एक जो ग्रुप है उसमें अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उससे सारे ग्रुप के ख़िलाफ़ जो है आप ऐसे कानून बना रहे हैं। तो ये अभी डेनिश बार एसोसिएशन और डेनिश जजेस एसोसिएशन उन्होंने भी ये कहा है कि हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए और हुकूमत को ये काम नहीं करना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत उनकी बात सुनेगी?
1: हुकूमत उनकी बात सुनेंगी या नहीं, लेकिन इन तमाम तंजीमों ने और जजों की तंजीम ने और वखला की तंजीम ने जिस तरह से हुकूमत को मतनबे करते हुए इस बात से खबरदार किया है कि कानून जो है ये आलमी असूलों के खिलाफ होगा, खुद दैनिक इकदार और असूलों के खिलाफ होगा, कानून के खिलाफ होगा, लेकिन इसको कानून का रूप देकर जिस तरह पार्लियामेंट में पेश करने की बातें की जा रही हैं, मंजूर कराने की बातें की जा रही हैं, वो इंतहा दुख दे। और रेडिकलाइजेशन जो है वो सिर्फ अगर ये समझते हैं कि हम मुसलमान नौजवानों में ये चीज पाई जाती है या हम ही इसके हैं, तो अभी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि 3 लड़के यहाँ धनबाद में ऐसे पकड़े गए हैं जो एक स्कूल को बम से उड़ाना चाहते थे। आपने वो केस पढ़ा हो?
0: जी जी हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इनको अपने घर के अंदर भी ये चीज देखनी चाहिए इससे पहले कि ये इल्जाम लगाते फिरे। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग जो है सारे ही पाक साफ है, नहीं, हमें भी आपने आपको देखना चाहिए, आपने अब करना चाहिए, कानून के दायरे में रहना चाहिए, लेकिन ये सब बातें करते हुए भी जब हमें मुर्दे इल्जाम कराया जाता है तो हम ये पूछने से आपके लिए हक बजानब है कि क्या आपने अपने घर के आंगन में या पिछवाड़े में भी देखा है तो वहाँ क्या हो रहा है,
0: अच्छा
1: क्या कर रहे हैं
0: जी? लिबरल अलायंस जो है जो बहुत बड़ी सियासी पार्टी है उसके चेयरमैन ने इस पे एक बयान दिया है, ये जो 3 बच्चों की आपने डेनिश बच्चों की बात की, उन्होंने कहा है कि अगर ये बच्चे कुछ ऐसा करना चाहते तो उनको चाहिए था कि वो हॉटलाइन को कांटेक्ट करते और कोई जो है साइकोलॉजिकल हेल्प उनको दी जाती। तो ये ऐसे ऐसे महसूस होता है कि अगर कोई डेनिश बच्चे अगर डेनिश लोग अगर टेररिज्म की तरह मायल हों तो उनको कहा जाता है कि इनका मेंटली डिस्टर्ब है ये और इनको इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर यही कोई बात अगर कोई मुसलमान शख्स करता है या कोई तंजीम कुछ कहती तो उसके ऊपर फौरन जो है वो टेररिज्म रेडिकलाइजेशन का इल्ज़ाम लग जाता है। तो यहाँ भी ये महसूस होता है कि डेनमार्क के जो सियासतदान हैं वो अगर एक डेनिश गोरा डेनिश अगर कोई बात करता है तो उसको और तरीके से देखते हैं, अगर कोई गैर मुल्की या मुसलमान ख़ास तौर पे अगर कोई जुर्म करने की तरफ मायल होता है तो उसको और तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है।
1: बिल्कुल आपने बजा कहा, और चीज़ ये है कि ऐसा जिनका ये इरादा हो कि वो किसी स्कूल को सरकारी इमारत को या किसी जगह को बम से उड़ा देना चाहते हैं तो क्या आप समझते हैं कि वो किससे जाके मशवरा करेगा कि हम इसको किस तरह ना उड़ाएं?
0: जी
1: जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो किसी माहिर से ये पूछे कि इसको किस तरह आसानी से उड़ाया जा सकता है। तजुब होता है, बाजू बात हंसी आती है डैमेज सिस्टम पर कि आपको तो याद है जहाँ पर एक हेल्पलाइन है जो उन अफसाद की मदद करती है, रोकती है उनको जो खुदकुशी का इरादा करते हैं।
0: जी हाँ,
1: अब्बासी साहब जब आपने मरने का इरादा कर ही लिया है, आपसे मुराद आप नहीं कोई और, तो क्या आप पहले उनको टेलीफोन करेंगे कि जी मुझे बताइए कि मैं कैसे बच सकता हूँ?
0: जी जी जी, उसकी नसर साहब उसकी वजह यह है कि सोसाइटी ये समझती है,
1: वजह मुझे भी मालूम है।
0: नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहा जाता है कि उसका उसके साथ बात करने से उसकी बात सुनने से हो सकता है कि उस शख्स की मदद उसको मदद मिले और वो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाए। तो क्या यही बात اس شخص کی طرف کے ساتھ بھی ہونی چاہیے جو مسلمان ہو یا غیر ملکی ہو اور کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہو, تو کیا ان کو نہیں چاہیے کہ ان کے بارے میں بھی ایسی پالیسیز بنائی جائیں؟
1: دیکھیے یہ پالیسی جو ہے یہ خودکشی سے بچنے کے لیے, یہ سب کے لیے ہے, اس میں مسلمان بھی ہیں تمام برادری کا,
0: جی جی جی,
1: اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہنسی کی بات یہ ہے کہ کیا ایسا فیصلہ کر لینے والوں کو گلے میں پھندا ڈال کر وہ ریسیور پہ بات کرے گا کہ میں نے پھندا ڈالا ہوا ہے, مجھے بتائیے کہ میں کیسے کروں؟
0: جی جی,
1: ان نوجوانوں کو جو اس طرح کے اقدامات پر اتر آتے ہیں بدقسمتی سے, ان کی تربیت گھر سے شروع ہونی چاہیے. ہمارے اپنے خاندان جو ہیں, ہمارے خاص طور پر یہاں گنمت میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں, ان کو بھی اپنے بچوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ وہ معاشرے کے اثرات کو قبول کرتے ہوئے کسی بری راہ پر نہ چل پڑے.
0: بالکل. اچھا, ابھی الیکشن کے بعد جو ہے وہ ایس ایف حکومت میں چلی گئی, اور لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پچھتا رہے ہیں کچھ لوگ کہ ایس ایف جو ہے اس کی پالیسیز بھی وہی ہو رہی ہیں جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اور ان کی ایک بڑی مشہور ممبر ہیں ترکش بیک گراؤنڈ کی حلیمہ اگوش, اب انہوں نے پارٹی چھوڑ کے وہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی میں چلے گئے ہیں. تو اب وہ ہر شخص جو کسی زمانے میں غیر ملکیوں میں جو وہ اچھے کام کرتا تھا, اب وہ بھی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی پالیسی جو غیر ملکیوں کے بارے میں, اس کے بارے میں وہ اب زیادہ اس کے طرف متوجہ ہو رہے ہیں یہ لوگ نا, تو
1: یہ رجحان جو ہے یہ کچھ اچھا نہیں دکھائی دے رہا,
0: جی,
1: خاص طور پر غیر ملکیوں کے متعلق. اور پھر اس صورت میں تو اور بھی یہ دکھ دہ بات ہے کہ ایک خود غیر ملکی پس منظر کی حامل خاتون جو ہے وہ ایک دائیں بازو کی پارٹی کو چھوڑ کر سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف جا رہی ہیں, اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی باشیت کی بھولی غیر ملکی طبیعت کیا پر دکھتے ہیں, اور خاص طور پر مسلمانوں کے مطابق جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, بالکل نسل خاتون یہ مسلمان پس منظر بھی رکھتی ہیں, اسلامی پس منظر بھی رکھتی ہیں, اور خود غیر ملکی پس منظر بھی رکھتی ہیں. اب ان کے یہ فیصلے جو ہیں یہ انہیں کس نگر پر لے کے جائیں گے, اور سوشل ڈیموکریٹ پارٹی اپنی پارٹی میں ان کی موجودگی سے کیا فائدہ اٹھائے گی, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایس ایف پارٹی جو ہے وہ کم و بیش ان پالیسیوں سے منحرف ہو چکی ہے جو وہ غیر ملکیوں کے متعلق ایک دعوانہ رویہ کی عکاسی کرنے والی ہوتی
0: بڑے عرصے تک.
1: کسی زمانے میں ریڈیکل ویسٹا اور ایسے پارٹی جو تھی ان کو بہت انسان دوست اور غیر ملکیوں کے حق میں رہنے والی پارٹیاں سے جانا جاتا تھا, لیکن بدقسمتی سے اب یہ سٹرکل جو ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے.
0: اچھا, اسی ڈیبیٹ میں, اسی بحث میں ایک لفظ جو ہے وہ بہت بار بار استعمال کیا جا رہا ہے, او ڈینسک, یعنی نان ڈینش ویلیوز جو ہے, تو اب اس پہ جو ریڈیکل وینسٹرا کے جو وائس چیئرمین ہیں سمیرا ناوا, ان کے اوپر بحث کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باتوں سے ایسے لگتا ہے وہ ڈینشوں کی سائٹ پہ نہیں ہے, وہ جو ہے وہ غیر ملکیوں کی سائٹ پہ ہیں. تو ہر وہ شخص جو ہے جو کوئی عقل کی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ او ڈینسک ہے, یہ ڈینش ویلیو کے خلاف ہے. تو یہ بھی تو عجیب سی بات ہے کہ اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ ڈینش کیا ہے اور نان ڈینش کیا ہے.
1: بالکل, یہ آپ نے بات بالکل درست کہی. یہ سلسلہ تو کم و بیش تب سے جاری ہے جب ہم یہاں آئے تھے, آپ کو تو معلوم ہے
0: جی
1: کہ ڈینش ہونا کیا ہے اور غیر ملکی ہونا کیا ہے, اس میں جتنا تضاد ان لوگوں نے خود پیدا کیا ہے.
0: جی,
1: اب ہمارے جو نوجوان یہاں پر ہماری تیسری پیڑھی کے جو لوگ ہیں وہ بالکل اس معاشرے کے اسی طرح آداب جانتے ہیں جیسے کہ ایک عام دینش نوجوان ہے.
0: جی,
1: اب اس کو یہ کہنا کہ تمہارا یہ جو تم پہنتے ہو یہ اوڈنس ہے یا یہ جو کھاتے ہو یہ اوڈنس ہے, یہ تو اہم خانہ باتیں ہیں. کون کیا پہنتا ہے, کیا کھاتا ہے, کس طرح رہتا ہے, یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے.
0: Exactly.
1: یہ قومی مسئلہ نہیں
0: ہے.
1: قومی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کس طرح اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب کیا جائے, इनको किस तरह रोजगार मुहैया किया जाए और किस तरह इनके मसाइल जो है वो हल किए जाए, उसकी तरफ ये सियासतदान कोई तवज्जो नहीं देते।
0: बिल्कुल, और सोसाइटी में मुआशरे में बहुत से प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसके बारे में इनको तवज्जो देनी चाहिए। एक मसला जिस पे बहुत बात नहीं हो रही वो है कि नौजवान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका जहरीले मंशियात जो हैं उनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ रहा है। अभी एक हस्पताल की रिपोर्ट आई है कि ये नौजवान बच्चे जो हैं वो एक ख़ास किस्म की अफ्यून इस्तेमाल करते हैं पाइप्स में डाल के, और 15 से 24 साल की उम्र के जो ये जो लोग हैं नौजवान, इसकी तादाद बहुत बढ़ गई है 2020 के मुकाबले में। अभी ये 25-30% तादाद इनकी बढ़ गई है। तो मंशियात का अभी मैं आपको बताऊं, जब मैं अभी रेडियो स्टेशन में आने के लिए जब हम आए थे तो जो हमारा दरवाज़ा रेडियो स्टेशन का, उसके बाहर तीन लोग जो है बैठे हुए मंशियात इस्तेमाल करते। जब मैंने उनको कहा कि प्लीज़ हट जाओ हमें दरवाज़ा खोलें, तो वो हमारे पे बरस पड़े। तो ये मंशियात का मसला भी बहुत बड़ा मसला है सोसाइटी में, और इस पे ख़ासतौर पे नौजवान लोगों पे, इस पे भी तो सियासतदानों को थोड़ी सी ज़्यादा गर्म जोशी दिखानी चाहिए।
1: या आपने बिल्कुल बजा कहा है, ये मसला बहुत तेज़ी से और बड़ी तेज़ी और बड़े मुस्बत अंदाज में बहस है
0: जी।
1: और अभी हालिया सर्वे जिसका आपने जिक्र किया है उसकी रोशनी में मुख्तलिफ लोग जो हैं जो इस मामले को जानते हैं
0: जी,
1: वो अपनी अपनी आरा का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी चीज़ें आकर मार्केट में कैसे आ जाती हैं, इनको रोका क्यों नहीं जाता।
0: बिल्कुल,
1: अभी आपने देखा है कि नरब्रो के इलाके में और दूसरी चंद जगहों पर पुलिस ने कुछ छापे मारे हैं मुख्य छोटी छोटी कियोस्कों पर जहाँ से ये चीज़ें बरामद भी हुई हैं।
0: और चर्च वगैरह भी अभी जब से क्रिश्चियनिया बंद किया तो वो भी बहुत फैल गई है अभी।
1: और मैं आपने सुनने वाले जो आबाद हैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि हर चंद के इसमें आप पैसे कमा सकते हैं और पैसे कमाते भी हैं, लेकिन खुदा के लिए ऐसी चीज़ों से परहेज कीजिए, इज्तनाब कीजिए, ना इन्हें फरोख्त कीजिए और ना इन्हें अपने पास रखिए। और अगर आपके पास कोई नौजवान आता है कि जी मुझे ये चाहिए, तो उसे छुपके से वो पुड़िया पकड़ाने और पैसे वसूल करने की बजाय उससे कहें कि अपने आप को संभालो, आप क्यों अपना जोबन और अपने आपको अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। नसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और मुख्तलिफ मौजूआत पे हमने बात की है।
1: बहुत नवाजिश आपकी। और सिर्फ अब जुमे के दिन तो हमारा योम आज़ादी था वो गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि पाकिस्तान वाकई ही अपने आज़ादी को आज़ाद मुल्क के तौर पर मना सके।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रज़ा भाई। ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और हमें उम्मीद है कि हमारे सामईन और नाज़रीन जो है उनको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए होगा। तो अगले हफ्ते हम एक और नया प्रोग्राम आएंगे जिसमें हमने एक गेस्ट को भी बुलाया है, उसके साथ भी हम बातचीत करेंगे। तो अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84। ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम वतन

13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक।